0: अजय, अजू,
1: आप मुझसे कुछ कह रही हैं?
0: भैया के बर्ताव से अब तक नाराज हो? मेरे प्यार पे इतना गुस्सा? मुझे तो तुम्हारे गुस्से पे भी प्यार आता है।
1: देखिए, मुझे लगता है कि आपकी अजय की शक्ल मुझसे मिलती है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ।
0: अजय, अजय, मैं आशा हूँ, तुम्हारी आशा।
1: मैं किसी आशा को नहीं जानता।
0: भैया ठीक ही कहते थे, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। मैं भैया से कह के तुम्हें अंदर करवा दूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। वो तुम्हारा बात बात पर शर्माना, वो भोलापन, मैं तुम्हारा वो खत भी फाड़ दूंगी।

दोजख की आग में जल मरने वालों के। मगर अफसोस, आज की दुनिया में मजनू, फरहा, रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों, आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।